ठीक है। हेलो, फोन था दस प्लीज पास ऑन वे क्रॉसेस करती सेवेंटी हर एक्सप्रेशन ब्राउन ब्लैक मेल 32 वेयरिंग व्हाइट शर्ट बॉक्सर्स क्लोथिंग 45 एंड हेयर पिन एंड हेयर विद कोन The hairpin head while he was holding his phone. Medics are going to be staging.